0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे खुशी बेलन सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलन जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मोलो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता शीरा तुन माई का तक अमीन इन रोमा है ने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी ने लिली जुविंतुरी ने पापेल जुविंतुरी